इंसान भलाई की दुआएं करता करता तो थकता नहीं, और अगर तकलीफ पहुंच जाती है तो ना उम्मीद हो जाता और आस तोड़ बैठता है।

0: देखो ये अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में हैं। सुन रखो कि वो हर चीज पर इहाता किए हुए है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

0: क्या उन्होंने उसके सिवा कारसाज बनाए हैं? कारसाज तो खुदा ही है और वही मुर्दों को जिंदा करेगा और वो हर चीज पर कुदरत रखता है।
1: वमा

आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला वही है, उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स के जोड़े बनाए और चारपायों की भी जोड़े बनाए और इसी तरीक पर तुमको फैलाता रहता है। उस जैसी कोई चीज नहीं और वो सुनता देखता है। लहू

0: लोगों, जो माल और मता तुमको दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी का नापायदार फायदा है, और जो कुछ खुदा के यहाँ है वो बेहतर और कायम रहने वाला है, यानी उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं।
1: وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ
0: और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं और जब गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं।

0: फिर अगर ये मुंह फेर लें तो हमने तुमको उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा, तुम्हारा काम तो सिर्फ आहकाम का पहुंचा देना है। और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मजाक चखाते हैं तो उससे खुश हो जाता है, और अगर उनको उन्हीं के आमाल के सबब कोई सख्ती पहुंचती है तो सब एहसानों को भूल जाता है। बेशक इंसान बड़ा नाशुकरा है।
1: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن

0: ताकि तुम उनकी पीठ पर चढ़ बैठो और जब उस पर बैठ जाओ फिर अपने परवरदिगार के एहसान को याद करो और कहो कि वो जात पाक है जिसने उसको हमारे जेरे फरमान कर दिया और हम में ताकत न थी कि उसको बस में कर लेते। और हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। और उन्होंने उसके बंदों में से उसके लिए औलाद मुकर्रर की, बेशक इंसान सरीह नाशुक्रा है।
1: अम इत्तखज मिम्मा यखलुक बनातिन व अस्फाकुम बिलबनीन,
0: क्या उसने अपनी मखलूकात में से खुद तो बेटियां ली और तुमको चुनकर बेटे दिए।
1: व इजा बुशिर अहदुहुम बिमा ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم,
0: हालांकि जब उनमें से किसी को उस चीज की खुशखबरी दी जाती है जो उन्होंने खुदा के लिए बयान की है तो उसका मुंह स्याह हो जाता और वो गम से भर जाता है।
1: अवमन युनशा फिल हिलियत वहुवा फिल खिसाम गैर मुबीन,
0: क्या वो जो जेवर में परवरिश पाए और झगड़े के वक्त बात न कर सके खुदा की बेटी हो सकती है।
1: वजअलु

और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सबको अपने हुक्म से तुम्हारे काम में लगा दिया। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इसमें कुदरत खुदा की निशानियां हैं।

और कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था उसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे और तुम्हारा ठिकाना दोजख है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं।

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6। रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए यूसीपी की दुनिया के साथ। तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक एवरीवन। आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। तो अभी आज फैकल्टी आवर में हम डिस्कस कर रहे हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कुछ aspects. My name is Dr. Faisal Tusi, and my side is Professor Jaleel Mirza, and we are discussing the engineering industry. So Jaleel sahab, abhi hum baat kar rahe the, us waqt yani ki aaj se ko 30 saal pehle ke networks aur aapke networks se jisme kitna farak aa gaya hai, aur hamare younger listeners ko shayad dono ka farak bhi nahi pata ki pehle ki kis kisam ke technology istemal hote the. But let's move on to other industries. So for example, agar koi isse koi student agar graduate kar jaye with a bachelor's degree in electrical engineering ya phir mechanical engineering for example, to kis kis के इंडस्ट्री में वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है?
2: ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ जो इस वक्त हमारी पाकिस्तानी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ एक डिलीमा है ना, वो ये है कि उनको ये पता ही नहीं है कि हमारी जॉब कहाँ कहाँ अवेलेबल है।
1: बिल्कुल,
2: दिस इज अनफॉर्चुनेट कि उनको ये आइडिया ही नहीं है। वो सिर्फ एक कन्वेंशनल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या सिविल इंजीनियर हो, उससे अगर पूछा जाए ना कि भी तुम किस कहाँ जॉब करना पसंद करोगे, तो उसको गिने चुने चंद नाम पता होते हैं कि जी हमने एनटीडीसी में जॉब करनी है, चाहे वो मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऐसी ये डिग्रीज हैं जो एनटीडीसी में यानी तीनों अवेलेबल है, तीनों के लिए जॉब्स अवेलेबल है। या वो कहेंगे जी हम लेस्को, जेस्को, फेस्को या के इलेक्ट्रिक या ये जो वापडा, इस तरह की वो बातें करते हैं कि जी हम इस एरिए में जाएंगे। दूसरा ये है कि उस ऑडियंस को थोड़ा सा वो कोई टेलीकॉम के एरिए में या इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के एरिए में अगर उसने डिग्री की है, स्पेशलाइजेशन की है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जंप करेगा, तो वो कहेगा जी हम सेलफोन कंपनीज में चले जाएंगे, हम पीटीसीएल में चले जाएंगे, एंड दैट्स इट। ये एक छोटी सी दुनिया उन्होंने अपने जहन में बनाई हुई है, लेकिन ये सारी की सारी इंडस्ट्री का 5% भी नहीं है।
1: बिल्कुल,
2: आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने बात की है, जो स्टूडेंट को जिन चीजों का नॉलेज है, वो 5% इंडस्ट्री को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, लेकिन एक्चुअल जो स्कोप है वो तो बहुत फसी स्कोप है। और अगर मैं स्टैट्स डिस्कस करूं आपके साथ,
1: जलील साहब जरूर आप वजाहत करें
2: जी, मैं आपके साथ स्टैट अगर डिस्कस करूं, और मैं अभी बिल्कुल ऐसे स्टैट बताऊंगा जो बिल्कुल रफली स्टैट्स हैं, और इट इज बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ SECP, यानी मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूं जो कंपनियां रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। इनमें कोई वो कंपनी शामिल नहीं है जो लोकल गवर्नमेंट में या लोकल अथॉरिटीज में रजिस्टर्ड है, ये नेशन वाइड रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारा अगर डेटा अगर हम देखें तो हमारे पास तकरीबन 27,000 कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, चल रही हैं, सर्विस दे रही हैं, प्रोडक्शन दे रही हैं, और वो यानी प्रोड्यूस कर रही हैं।
1: ये कंपनीज है और जस्ट पार्ट ऑफ द कंपनीज पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री?
2: ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री,
1: ठीक है।
2: और इनमें जाहिर है कुछ ऐसी, देखिए मैं जब मैं हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो शायद इंजीनियर्स के लिए कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो इंजीनियर एक ऐसी एंटिटी है जिसको बैंकों में भी, फाइनेंस सेक्टर में भी जरूरत होती है इंजीनियर्स की, और प्राइवेट किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं वहाँ इंजीनियर्स जो है ना, अगर ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर लेंगे तो वहाँ भी आपको इंजीनियर्स मिलेंगे। अभी मतलब लाहौर में हमारे पास ऑरेंज ट्रेन चल रही है, तो यहाँ इस ऑरेंज ट्रेन को चलाने के लिए 90% इंजीनियर है, 10% जो है वो स्टाफ है जो यानी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कह लें।
1: तो जलील साहब, अगर 27,000 कंपनीज रजिस्टर्ड है कंपनीज, तो उनके फिर इंजीनियर्स को हायर करने की एनुअल डिमांड कितनी होगी?
2: देखिए जी, मैं बड़ा बहुत रफली और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है। आप थोड़ा सा सोचे कि एक कंपनी जो कि 15,000-20,000 या 5,000-6,000 लोगों को जॉब दे रही है, और उसके अंदर एनुअली कितने लोग रिटायर होते होंगे, अपनी जॉब से. मैं यानी ये एक मैं रफली बात कर रहा हूँ.
1: एक या दो तो हो ही जाते होंगे.
2: एक दो तो आप 5,000 की कंपनी में एक दो तो नहीं रिटायर होते होंगे. इट्स मोर देन दैट, मच मोर देन दैट होते होंगे. तो मैं एक ऐसे ही आपसे एक बात करता हूँ कि अगर हर कंपनी में एक इंजीनियर एनुअली ऐड किया जाए, यानी रिप्लेसमेंट के तौर पे, नया नहीं. कोई मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा आपके साथ कि वो कंपनी ग्रो कर रही है और उसको नए इंजीनियर्स की ज़रूरत है. मैं करंट इंजीनियरिंग स्टाफ को लेके मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक कंपनी में एक बंदा रिटायर और उसकी पोस्ट को फिल करने के लिए एक नया इंजीनियर रखे, तो हम तकरीबन 27,000 इंजीनियर पर एनम जो है उनको जॉब दे सकते हैं.
1: जलील साहब, आई एम क्वाइट श्योर के इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं साल के.
2: एग्जैक्टली.
1: तो फिर इसका इंडस्ट्री पे क्या असर होता है?
2: अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और वजाहत कर देता हूँ. ये तो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल लोकल डिमांड की, और अगर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया जाए इंडस्ट्री की डिमांड के, तो हमारी लोकल डिमांड कोई 50,000 to 60,000 पर एनम पाकिस्तान की उस इंडस्ट्री को इंजीनियर चाहिए होते हैं जो बिल्कुल इंटेक्टेड है और प्रोड्यूस कर रही है और सर्विस दे रही है. ठीक है, मैं नई इंडस्ट्री नए एडअप की बात नहीं कर रहा. वो एसेंशियल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान का कोर बैकबोन है, उसको हर साल जो है अगर एक बंदा भी वो रखे अपना रिप्लेसमेंट के तौर पे, तो हमें 27,000 इंजीनियर जो है ना वो चाहिए होते हैं. लेकिन इसकी जो एक्चुअल डिमांड है वो 2 to 3 इंजीनियर जो हैं अगर हम लगाएं, तो ये 50,000 to 60,000 इंजीनियर हमें सलाना चाहिए होते हैं लोकल पाकिस्तान में. अब उसके बाद आ जाए ओवरसीज इंजीनियर. हमारी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं, इनकी मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, दुबई में एक बहुत ज़्यादा डिमांड है इन इंजीनियर्स की. तो और इसके अलावा यूरोप और अमेरिका में भी इन इंजीनियर्स की, पाकिस्तान इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है. और इसकी भी अगर मैं एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हुए आपको एक फिगर बताऊं, तो ये 25,000 to 30,000 बंदा हमें ओवरसीज भेजना होता है हर साल. तो ये डिमांड भी अगर दोनों डिमांडों को ऐड करें, तो 90,000 इंजीनियर जो है वो हमें हर साल चाहिए. तो हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? हम 25,000 to 30,000 इंजीनियर सलाना प्रोड्यूस कर रहे हैं.
1: मेरा ख्याल इससे भी कम,
2: शायद इससे भी कम
1: सिग्निफिकेंटली. तो जो इस अलग से कि जितनी हमें हमारी सलाना डिमांड है लोकल, लेट्स स्टिक विद लोकल फॉर नाउ, तो हम उससे उसके हाफ से भी कम अगर प्रोड्यूस करेंगे, इसका असर किस किस्म का होगा हमारे अपनी लोकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पे?
2: देखिए जी, आपको शायद पता ही है कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी का बूम है इस वक्त, टेक्नोलॉजी तमाम इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही है, और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से अफेक्ट कर रही है कि हमें अब जो ओल्ड टेक्नोलॉजी को लेके जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, उन सारे इंजीनियर को आहिस्ता आहिस्ता करके रिप्लेस करना है विद न्यू इंजीनियर. अब वो न्यू इंजीनियर्स जो हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेंड होंगे, और वो जाके उस इंडस्ट्री में अपना काम जब करेंगे तो फिर हमारी इंडस्ट्री बूम करेगी. अदरवाइज शायद मैं आपको एक और फिगर बता दूं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री जो ग्रो नहीं कर रही ना, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि उसके अंदर नई इनटेक नहीं हो रही. न्यू इनटेक ना होने की वजह से जो नई चीज़ें सीख के बच्चे आ रहे हैं, वो एक तो नंबर भी बहुत कम है, और दूसरा ये है कि वो उनके लिए वो जो अपॉर्चुनिटी है उनको पता भी नहीं है कि हमारी अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पड़ी हुई. तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि हमें ये बता देना चाहिए स्टूडेंट को कि हमारा एरिया कौन सा है. हम सिर्फ टेलीकॉम और पावर सेक्टर को लेके एरिया बना के इंजीनियरिंग यहाँ तक ख़त्म कर देते, ये हमारा एरिया नहीं है.
1: जी, इस पे ज़रा वज़ाहत
2: जी करें. जी, इस पे मैं आपको एक क्लियर चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि फूड इंडस्ट्री है, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है. ये एक अच्छी खासी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें बड़ी बड़ी प्रोफेशनल बेकरीज भी आ जाती हैं, और बहुत बहुत बड़े ह्यूज मैन्युफैक्चरर्स जो आ जाते हैं बड़े, उसमें यानी मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं जिन्होंने इधर फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, और लोकल कंपनीज भी हैं जिन्होंने फैक्ट्री, और ये बड़े अरसे से यहाँ पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्शन दे रहे हैं, और लोगों को यानी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये फूड एंड बिवरेज की मैं बात करता हूँ। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान की जो बैकबोन इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आप यान को लेके, उसकी प्रोसेसिंग को लेके, आप कपड़े की प्रोडक्शन से लेके आप रेडीमेड गारमेंट्स तक चले जाए, यानी मीन के इतना बड़ा सेक्टर है, इतना बड़ा सेक्टर है। और उसमें आए दिन जो लेटेस्ट आपकी लूम्स आ रही हैं और जो लेटेस्ट इक्विपमेंट आ रहा है, मशीनें आ रही हैं, वो सारी की सारी अब कंप्यूटराइज आ रही हैं। वो पुरानी लूम्स तो नहीं है जो, यानी कोई 19th century की जो लूमें हैं वो तो नहीं है। जब तक आप अपनी लूम्स को अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, आप वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड को मीट करेंगे।
1: तो टाइम फॉर ब्रेक, फिर हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: वेलकम बैक एवरीवन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया. मेरा नाम है डॉक्टर फैसल तूसी. हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जलील असगर मिर्ज़ा फैकल्टी आवर में. वी आर टॉकिंग अबाउट द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री. तो जलील साहब, अ क्विक केस स्टडी ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो आपने रिसेंटली एक फैक्ट्री को विजिट किया, सैफायर, जो कि बहुत बड़ा बहुत पॉपुलर ब्रांड है, टेक्सटाइल ब्रांड है पाकिस्तान का. तो आपने विजिट किया है वहाँ पे, थोड़ा सा बताइए कि हमारे लिस्टनर्स को वहाँ पर जाके क्या देखे. बिकॉज व्हेन वी इमेजिन ब्रांड लाइक सैफायर, तो हम सोचेंगे कि वहाँ पे डिज़ाइनर्स काम कर रहे होंगे और एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ आर्टिस्ट जो कि होंगे भी. लेकिन व्हेन यू विजिट, आपने जब उनका फैक्ट्री विजिट किया है, तो आपने क्या देखा?
2: देखिए जी, ये अपना फैक्ट्रीज का जो विजिट है, ये इस तरह पॉसिबल हुआ कि मैं एक कंपनी के लिए एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था. तो वहाँ कोई मशीनरी जो थी वो अपग्रेडेशन में जा रही थी, तो मैं उनके वो जो कंपनी अपग्रेड कर रही थी, जो इक्विपमेंट प्रोवाइडर थे, उनके साथ मुझे विज़िट करने का इत्तेफाक हुआ. ये सिर्फ ओनली सफ़ायर की बात नहीं है, ये एक दो और भी कंपनियां जिनमें निशात भी कंपनी शामिल है.
1: एग्जैक्टली.
2: तो इधर जब हम जब सोचते हैं कि जिस अभी आपने कहा कि जी वो वहाँ तो सिर्फ
1: डिज़ाइनर
2: का काम है, या यानी मीन के जो आर्टिस्ट लोगों का काम है, तो एक्चुअली ये आर्टिस्ट और डिज़ाइनर जो हैं, ये इनके एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, जो कि फैक्ट्रियों में शायद नहीं बैठते. ये एक सेपरेट जगह पे बैठ के ये सब काम कर रहे होते हैं, और इनका काम एक कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन के ऊपर काम होता है, और ये वहाँ ही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं. लेकिन एक्चुअली जब जहाँ कपड़ा बन रहा होता है, वो एक अलग ही दुनिया है. वहाँ अगर आप चले जाए तो आपको लगेगा कि आप एक शहर में आके, यानी वो वहाँ आपको लगेगा कि ये एक लदा दुनिया है, ये एक कोई नया सिटी है जिसके अंदर हम गेट में एंटर होंगे तो आपको एक लदा दुनिया मिलेगी. अब जब यहाँ जब मुझे वहाँ उनके जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे इंजीनियरिंग के, उनसे बात करने का मौका मिला, तो वो मैंने उनसे डिस्कस किया. मैंने कहा यार आपके पास, हम तो ज़रा इलेक्ट्रिकल के सोल्यूशन के लिए आए हैं, तो यहाँ बाकी चीज़ें कैसे? तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो हमारे पास हर किस्म के इंजीनियर होते हैं. तो मैंने जब पूछा जी वो थोड़ा एलैबोरेट करें, तो देन दे से कि जी हमारे पास सिविल इंजीनियर्स भी होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, और समटाइम केमिकल इंजीनियर्स भी होते हैं. तो देर आर ए ह्यूज टाइप ऑफ इंजीनियर वी हैव इन आवर इंडस्ट्री. तो इसके अंदर मेंटेनेंस के काम चल रहे होते हैं, जिनमें ये तीनों टाइप के इंजीनियर, चारों टाइप के इंजीनियर काम कर रहे होते हैं. इसके अलावा कोई मॉडिफिकेशन किसी जगह पे हो रही होती है, किसी जगह पे कोई नई चीज़ बन रही होती है, कोई नया सेक्शन ऐड हो रहा होता है, तो ये तीनों इंजीनियर जो हैं एक इंटेग्रल पार्ट है. तो फिर मैंने पूछा जी आपके पास इंजीनियर कितने होते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं गिन के नहीं बता सकता इतने इंजीनियर.
1: वाओ, ये एक टेक्सटाइल कंपनी की बात, फॉर एग्जांपल
2: सिर्फ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ. तो और फिर उनका ये भी था, उन्होंने ये कहा कि जी हमें तो हर वक्त इंजीनियर्स की ज़रूरत रहती है, यानी मीन के हमारी जो डिमांड है, हमारे तो यहाँ इस तरह का कंपटीशन होता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर बड़ा है, तो यहाँ हमारे अच्छे इंजीनियर्स को तोड़ते हैं एक दूसरे से. तो वो कोई उसको किसी को अच्छी सैलरी ऑफर करके वो यहाँ से इंजीनियर दूसरी कंपनी में चला जाता है, और फिर हमारी एक साल में ही कितनी दफ़ा डिमांड जो है ना रिक्वायरमेंट निकल आती है. तो और ये नहीं है कि ये सिर्फ हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, हमारे पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इन सारे इंजीनियर्स की जो है ना वो इस तरीके से डिमांड रहती. तो अब फैसल जरा थोड़ी देर के लिए गौर करो, इससे ह्यूज सेक्टर. अब पाकिस्तान के अंदर अगर टेक्सटाइल सेक्टर में हम देखें, तो ये कोई छोटी सी इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई 11,000 यूनिट लगे हुए हैं. और जब मैं कहता हूँ कि यूनिट लगे हुए हैं, तो ये हर यूनिट एक छोटा सा सिटी है. लोग रह भी अंदर रहे हैं, उनके स्कूल भी अंदर हैं, उनकी मस्जिदें भी अंदर हैं, उनके खाने पीने का बाजार भी अंदर बने हुए हैं, सब कुछ उस फैक्ट्री के अंदर है. तो आप अंदाज़ा करो कि ये कितना बड़ा स्कोप है पाकिस्तान के अंदर, और कितनी ब्लेसिंग है कि हम इतने बड़े सेक्टर को ले के चल रहे हैं और उनकी इंजीनियरिंग डिमांड को हम उस तरीके से फुलफिल नहीं कर रहे जिस तरह के हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें मोर इंजीनियर चाहिए, मोर लेटेस्ट इंजीनियर चाहिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं।
1: जलील साहब, आजकल एक परसेप्शन है जो कि आपकी बातों से लगता है कि बिल्कुल ही गलत परसेप्शन है लोगों का कि इस वक्त इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की डिमांड कम है। आपकी बातों से लगता है कि डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है कि जहां पे डिमांड है वहां सप्लाई पहुंच नहीं पा रही है।
2: 100% आपने सही बात की। इसकी एक मैंने पहले भी आपको बता दिया कि यहाँ अवेयरनेस की कमी है, ना हमारे स्टूडेंट्स को पता है कि हमारा जो हम पढ़ रहे हैं उसका स्कोप और उसका डिमांड किस जगह पे है। हमें एक हम ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो एक तो डिफरेंट क्लासेस हैं, एक वो लोग हैं जो अपने स्मॉल बिजनेसेस चला रहे हैं, एक वो लोग हैं जो लार्ज बिजनेसेस चला रहे हैं, एक वो लोग हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं या हम उनको एक मिडिल क्लास, और वो शुरू से गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा उनका वो जो है एक ज़्यादा रुझान रहा है। और लोगों अपने बच्चों को ये भी हमेशा से कहते आते हैं कि यार गवर्नमेंट की जॉब होनी चाहिए और गवर्नमेंट के अंदर जाके नौकरी करनी चाहिए। तो देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट जो है वो इतने बड़े बड़े अदारे नहीं चला सकती, वो प्राइवेटाइजेशन में बिलीव कर रही है। वो अपना जो अपना बोझ है वो कम करने के लिए बहुत सारे इदारों को प्राइवेट कर रही। तो ये थोड़ा सा हमें माइंडसेट चेंज करना चाहिए और बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो 27,000 यूनिट पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड यूनिट काम कर रहे हैं, वो आपके लिए मुंतजिर है, वो आपकी डेस्टिनी है। आप यहाँ से पढ़ के 6-6 महीने में देखता हूँ कि NTDC की कोई जॉब नहीं निकली, वापडा की कोई जॉब नहीं निकली, PTCL की कोई जॉब नहीं निकली। तो वो बच्चे बेचारे एप्लीकेशनें दे दे के 6-6 महीने घरों में इंतज़ार करते रहते हैं कि जी हमें इंटरव्यू के लिए कोई बुलाएगा करेगा। और वो लोग जो जाते ही आपको फ़ौरन रखने के लिए तैयार है, उनका बच्चों को पता ही नहीं है, वो एरिया हिडन एरिया है।
1: जलील साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ये बहुत अच्छी हमारी डिस्कशन रही है और आपने तो ये साबित कर दिया है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन ये कि बस कुछ अवेयरनेस की कमी है और शायद कुछ डिमांड सप्लाई का कुछ सही तरह वो मिल नहीं पा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टुडे एंड माय नेम इज डॉक्टर फैसल तूसी साइनिंग ऑफ फ्रॉम FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन।

0: ला सर, मैं भी ठीक हूँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। और सर, एक इनिशियल स्टेजेस पे एक सवाल दिमाग में आता है, वो आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि ये फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज है क्या?
1: फार्मेसी एक लाइफ सेविंग प्रोफेशन है। लाइफ सेविंग मीन्स कि ये वो प्रोफेशन है जिसके जरिए तमाम मेडिकल प्रैक्टिशनर पेशेंट्स की लाइफ सेव करने के लिए जो मेडिसिन बनाते हैं, उस मेडिसिन को बनाने का नाम फार्मेसी प्रोफेशन है।
0: राइट सर। सर, आप कब से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में हैं और क्या फराइज सर अंजाम दे रहे हैं?
1: यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने 2011 में फार्मेसी प्रोफेशन की इंसेप्शन की, स्टार्ट किया। अब इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जमशेद, माईसेल्फ और डॉक्टर इरफान बशीर, हम तीन लोगों ने इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी। और सिंस देन 2011 से अब तक मैं एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यहाँ काम कर रहा हूँ।
0: राइट सर। सर, जैसे कि आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं 2011 से अब तक, तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होता क्या है या इसकी क्या ड्यूटीज होती हैं?
1: प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बेसिकली एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन स्टूडेंट एंड द फैकल्टी, और उनको तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसको प्रोवाइड करने में उनको फैसिलिटेट करता है, लाइक वॉट एवर द नीड इन टर्म्स ऑफ देयर labs, in terms of their time, in terms of their labs management, so all things are being provided through myself.
0: Right, sir. Means to say, ये एक basically bridge होता है between university and
1: exactly,
0: the students.
1: Exactly.
0: So, sir, kindly हमारी audience को बताइएगा कि गुज़िश्ता 20 वर्ष से आप pharmacy field में काम कर रहे हैं, तो क्या experience है आपका relevant to this field?
1: Academia हमेशा हर तरह से अगर देखा जाए तो इट हैज़ बिन रिमेन अ बेस्ट प्रोफेशन, क्योंकि पैगंबर्स का ये एक शोभा है, और इस प्रोफेशन के अंदर रहते हुए हम अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से तमाम क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, और ना सिर्फ अपने अंदर डेवलप करते हैं बल्कि हमें मौका मिलता है कि हम फ्यूचर के अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनमें वो तमाम क्वालिटीज़ इनकॉर्पोरेट कर सकें। और यहाँ पर जब 2011 से ऑनवर्ड जब हमने फार्मेसी की प्रोफेशन यहाँ पर इंसेप्शन की, स्टार्ट किया, तो तब से यहाँ पर ये हम काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैंने मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स में काम किया, लाइक मैंने एज अ ड्रग इंस्पेक्टर भी काम किया, मैंने एज अ प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया, मैंने एज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के तौर पर काम किया, लेकिन इन तमाम प्रोफेशन के अंदर टीचिंग प्रोफेशन हैज़ बिन रिमेन द बेस्ट।
0: राइट सर। और यकीनन इस चीज़ का स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होता होगा कि जब प्रैक्टिकल फील्ड से एक टीचर आके आपको पढ़ाता है या उसने प्रैक्टिकल चीज़ें देखी होती हैं, तो वो जब रिलेट करता है तो वो स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।
1: Exactly.
0: तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या फार्मेसी डिपार्टमेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर करता है?
1: डेफिनेटली, फार्मेसी प्रोफेशन में जो हमारी मेन बेसिक रूट है दैट इज़ फॉर्म डी प्रोग्राम, एंड फॉर्म डी प्रोग्राम इज़ कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ अंडर ग्रेज।
0: राइट सर। तो सर, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है बेसिकली?
1: एग्जैक्टली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा सेट किया गया है बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, और वो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम एफएससी के अंदर हमें 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, मिनिमम 60% मार्क्स, और उस 60% मार्क्स के बाद हम फिर एक अपना मेरिट डेवलप करते हैं, लेकिन हमें कम अज़ कम लीस्ट पर 60 से नीचे हम किसी स्टूडेंट को एडमिशन ऑफर नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम ए लेवल और ओ लेवल की बात करें तो ए लेवल के बाद हम उनकी एक इक्विवेलेंसी की तरफ जाते हैं।
0: बिल्कुल राइट सर। अगर एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के फार्मेसी डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो मिनिमम उसके पास एफएससी में 60% मार्क्स होना
1: exactly,
0: जरूरी है।
1: Exactly.
0: तो सर, इसका कोई एडमिशन टेस्ट भी होता है या क्या रिक्वायरमेंट्स है इनिशियल स्टेजेस पे अगर हम देखें स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आना चाह रहे हैं तो?
1: एडमिशन, डेफिनेटली बात है कि तमाम जगहों पर एडमिशन टेस्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, तो यूसीबी भी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती है ताकि अपने बेस्ट स्टूडेंट्स को हम कैप्चर कर सकें। तो एक बेसिक लेवल पर एक एडमिशन टेस्ट को प्लेस किया गया है जो कि एम्फिसाइज करता है मुख्तलिफ किस्म के साइंस डिसिप्लिन को, लाइक उसके अंदर कुछ वेटेज हम प्लेस करते हैं इंग्लिश की, कुछ वेटेज उसमें फिजिक्स की होती है, केमिस्ट्री की होती है और बायोलॉजी की होती है। इन तमाम चीज़ों को कंबाइन करके हम एक टेस्ट बच्चों को देते हैं और उसकी बेसिस पर उनका इनिशियल लेवल पर एक टेस्ट ले लिया जाता है।
0: बिल्कुल सर। सर, जो बच्चे टेस्ट में आना चाह रहे हैं, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि टेस्ट डिफिकल्ट होगा, तो उसके हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे कि टेस्ट की नौइयत क्या होती है और किस टाइप का वो टेस्ट होता है?
1: हाँ, जैसे मैंने अभी बताया कि इसके अंदर चार मेजर डिसिप्लिन इन्वॉल्व हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, लेकिन इसके अंदर हम डिफ़िकल्टी लेवल को कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं ले जाते, जस्ट दे आर एट सच लेवल के उस बेसिक उसके कॉन्सेप्ट्स बच्चों के क्लियर हों, ताकि एटलीस्ट इस डिसिप्लिन में जब हमने लाइफ सेविंग प्रोफेशन की बात करते हैं तो उसमें वो बच्चे आ सकें जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं।
0: बिल्कुल सर, ऐसे ही है सर। ये जो ओ लेवल्स के बच्चे होते हैं, ए लेवल्स के बच्चे

0: चाहते हैं, जब वो आना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के फार्मेसी डिपार्टमेंट में, तो एडिशनली उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ऐसे?
1: एग्जैक्टली, उनको एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उनको एक इक्विवेलेंसी देनी पड़ती है, एंड दैट इक्विवेलेंसी को हम बोलते हैं IBCC से. IBCC से एक इक्विवेलेंस, एक सर्टिफिकेट उन्हें देना पड़ता है जो कि बताता है कि इनके कितने परसेंट मार्क्स हैं जो कि इक्विवेलेंट हैं टू FSC, और उसकी बेस पर उनको हम एडमिशन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं.
0: बिल्कुल, मतलब उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग आना होगा उनको. बिल्कुल सर, हम एक छोटे से कमर्शियल पे जाते हैं, देन हम हमारे ऑडियंस को बताएंगे हम कि ये क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं और क्रेडिट आवर्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं फॉर्म डी के प्रोग्राम्स के लिए. तो चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ. सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: 93.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक टू FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। तो हम बात कर रहे थे एडमिशंस पे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नदीम अलवी साहब। सर, बेसिकली आपसे पूछना चाहूंगा कि ये यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में ये ड्यूरेशंस क्या होते हैं, क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं, इनको कैसे मेंटेन करना होता है, ये क्या होता है?
2: क्रेडिट आवर बेसिकली एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है कि पर वीक आपने कितने आवर्स स्टडी करने हैं। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, इफ वन कोर्स इज देयर जिसके 3 क्रेडिट आवर हैं, इट मीन्स के पर वीक हमें उसके 3 घंटे स्टडी करना है, मिनिमम 3 आवर्स। और अगर हम लैब वर्क की बात करते हैं तो लैब वर्क का 1 क्रेडिट आवर इज इक्वल टू 3 कॉन्टैक्ट आवर्स। ये हमारे पास क्राइटेरिया सेट किया गया है बाय द HEC, और इसी को फिर ऑनवर्ड हम फिर आगे उसके स्केल पर ले जाते हैं जहां पर उसके लिहाज से GPA या CGPA की कैलकुलेशन की जाती है।
1: राइट सर, मतलब कि जो बच्चे हमारे पास वो कॉलेज लाइफ से आ रहे हैं, बिल्कुल वो 1-2 घंटे वाली क्लास वाला सिस्टम नहीं होने लगा, यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक क्रेडिट आवर्स होंगे जिनके अकॉर्डिंग उनको हर चीज को बैलेंस करना पड़ेगा।
2: Exactly.
1: तो सर हमें बताइएगा कि UCP क्या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी फार्मेसी में ऑफर करता है या नहीं?
2: UCP पोस्ट ग्रेजुएट में ऑफर डेफिनेटली करता है, क्योंकि हमारे पास जो फैकल्टी है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी वी हैव इन पंजाब, और माशाल्लाह हमारे पास जो हमारी फैकल्टी है वो PhD है और कुछ PhD अभी परसू कर रहे हैं। हमने तकरीबन हमारे पास इसमें 5 डिसिप्लिन बनते हैं जो कि हमारे पास पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम में आते हैं, और इन 5 में से 4 प्रोग्राम में हम MPhil प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं और 3 डिसिप्लिन में हम PhD भी ऑफर कर रहे हैं।
1: राइट सर, तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा?
2: एलिजिबिलिटी हमारे पास जो हमने इसके अंदर डिसाइड की हुई है वो है कुछ इस तरह के, पहली बात हमारे पास एक रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से जो कि HEC और PCP से रिकॉग्नाइज हो, वहां से एक डिग्री हो, और डिग्री के साथ इनके पास एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमने सेट किया हुआ है जो कि हमारे पास 2.5 CGPA, मतलब 2.5 CGPA मिनिमम हो, ऑफ कोर्स दे शुड हैव डिग्री विद देम, और उस डिग्री के साथ फिर हमने एक एंट्री टेस्ट साथ फिक्स किया हुआ है। वो एंट्री टेस्ट पास करने के बाद फिर हमने एक इंटरव्यू पैनल एक बिठाते हैं, उस इंटरव्यू पैनल के बेसिस पर कुछ हमारे पास नंबर आते हैं, इन सब को हम कमुलेट करते हैं, और कमुलेट करने के बाद हम अपने एक मेरिट डेवलप करते हैं, और उस मेरिट की बेस पर हम सेलेक्ट करते हैं कि पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम में कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं।
1: अमेजिंग सर। सर इसको थोड़ा मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा, इनिशियली स्टेजेस पे जो आपने एक टेस्ट बताया वो टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा।
2: हमारे पास जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम 4 प्रोग्राम में MPhil ऑफर कर रहे हैं और 3 प्रोग्राम में हम PhD। मैं पहले प्रोग्राम वाइज आपको बता दूं, हमारे पास फार्माकोलॉजी के अंदर हम MPhil कर रहे हैं, हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर MPhil ऑफर कर रहे हैं, हम फार्माकोग्नोसी के अंदर MPhil ऑफर कर रहे हैं, और हम फार्मास्यूटिक्स जो कि मेन डोमेन हमारी है, हम 2013 से इसमें MPhil प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। और जहाँ तक आप PhD की बात है तो हम PhD 3 प्रोग्राम में ऑफर कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी में कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कर रहे हैं, और फार्मास्यूटिक्स में कर रहे हैं। और ये किसी भी डिसिप्लिन की मेन बैकबोन होती हैं ये सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर हम ये तमाम MPhil और PhD प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। जैसा भी आपने कहा कि पहला स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप तो डेफिनेट सी बात है कि हमारी एलिजिबिलिटी होती है। तो उस एलिजिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि जो हम एक एंट्री टेस्ट बच्चों से हम लेते हैं, उस एंट्री टेस्ट के अंदर हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा कितने वेटेज या कितने परसेंट मार्क्स ले रहा है, और जो एलिजिबल होते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स का फिर हम आगे जाकर एक इंटरव्यू लेते हैं, और उनके एकेडेमिया के मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स, उनके रिटन टेस्ट के मार्क्स, इन सब को फिर हम एक जगह पर मर्ज करते हैं ताकि एक मेरिट बन जाए।
1: ठीक है सर। तो सर ये तमाम बच्चे जो एंट्री टेस्ट को पास करते हैं वो तमाम अपीयर होते हैं इंटरव्यूज में?
2: नहीं, हम सिर्फ उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, द वन जो हमारा एंट्री टेस्ट पास करते हैं, जो किसी वजह से पास नहीं कर पाते उनको एक अपॉर्चुनिटी दोबारा सी दी जाती है ताकि वो रिटन टेस्ट को पास करें, क्योंकि वो जो टेस्ट है दैट नीड टू बी पास एज पर HEC क्राइटेरिया, जिसको हम इक्विवेलेंट करते हैं टू गेट।
1: अमेजिंग, मीन्स टू से अगर आप फर्स्ट टाइम पे अपीयर नहीं हो पा रहे तो आपके पास एक रीटेक का चांस है, तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अमेजिंग सर, इसके बाद हमारे सामीन को जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इंतज़ार है वो स्कॉलरशिप्स का इंतज़ार है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब इस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है। तो एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम स्कॉलरशिप्स के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे और अपने सामीन को बताएंगे कि फॉर्म डी में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिनको वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक टू FM 92.6 UCP की दुनिया। सर, हम क्रेडिट ऑर्ब पे बात कर रहे थे आपसे, तो हमने उसको तो एक्सप्लोर किया, लेकिन एक डिग्री के लिए स्पेसिफिक कितने क्रेडिट ऑर्ब रिक्वायर्ड होते हैं?
4: फॉर्म डी प्रोग्राम में हमारे पास 198 टोटल क्रेडिट ऑर्ब हैं, जिसको हमने स्प्लिट किया हुआ है 10 सेमेस्टर्स में। हर सेमेस्टर में हमारे पास 18 से 22 क्रेडिट ऑर्ब हैं, और ये क्रेडिट ऑर्ब की जो डिवीजन है, ये हमने बिल्कुल फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के लेवल के मुताबिक, जो कैरिकुलम हमें दिया गया उसके मुताबिक है। इसका मतलब कि वी नीड टू हैव 198 क्रेडिट आर। और जैसा अभी आप कह रहे हो कि डिग्री के लिए, तो डिग्री के लिए जो हमें मिनिमम CGPA चाहिए वो 2.5 चाहिए। सो 2.5 इज रिक्वायर्ड फॉर द डिग्री अवार्ड।
3: राइट सर। सर, ये जो 10 सेमेस्टर्स हैं, काफ़ी लंबा एक वक्त होता है स्टूडेंट को देना होता है यूनिवर्सिटी को, तो इसमें क्या लैब्स की कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं, या लैब्स के साथ कैसे इंगेज किया जाता है स्टूडेंट्स को?
4: बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। इन दैट सेंस कि यूसीपी के पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स मौजूद हैं। हमारे पास 8 लैब्स मौजूद हैं जो कि अंडरग्रेड प्रोग्राम को डील करती हैं, और 2 लैब्स हैं हमारे पास जो कि पोस्ट ग्रेड की रिसर्च लैब्स हैं। तो जो 8 अंडरग्रेड के लैब्स हैं, मैं अगर आपको बता सकूं, इसमें हमारे पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की लैब है, फार्मास्यूटिक्स की लैब है, हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मेसी की लैब है, इंस्ट्रूमेंटेशन की लैब है, क्वालिटी कंट्रोल की लैब है, हमारे पास फार्माकोग्नोसी की लैब है, फार्माकोलॉजी की लैब है, फिजियोलॉजी की लैब है, एनाटमी की लैब है, माइक्रोबायोलॉजी की लैब है। सो ऑल ये डिसिप्लिन्स मर्ज हुए हुए हैं, और इसको कलेक्टिवली हम एक फॉर्म डी का नाम देते हैं।
3: मीन्स टू से सर, इतनी ज़्यादा लैब, मीन्स टू से हर स्पेसिफिक आपने एरिया की अलग से लैब डिज़ाइन की हुई है उस काम के लिए?
4: एग्जैक्टली, हमारे पास एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। फार्मेसी काउंसिल पाकिस्तान ने हमें एक बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से बाउंड किया होता है कि आपने इतने स्क्वायर फिट के अंदर रहते हुए लैब डेवलप करनी है, जो कि हमने 100% उसके मुताबिक बनाई है, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट। और वो तमाम अपरेटस, वो तमाम केमिकल्स, वो तमाम ग्लासवेयर्स जो कि हमें इंस्ट्रक्ट किया गया है, वो हम वहाँ पर हमने प्लेस किए हुए हैं। लाइक वहाँ पर हमारे पास रोटरी वेपरेटर है, वी हैव HPLC, वी हैव FTIR, वी हैव एलाइजा, वी हैव अ लॉट मोर अदर इक्विपमेंट जो कि वहाँ पर लैब्स के अंदर मौजूद हैं।
3: मिस्टर सेब, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में जितनी लैब्स अवेलेबल हैं, वो तमाम उस स्टैंडर्ड्स पे हैं जो नेशनली या इंटरनेशनली रिक्वायर्ड होते हैं एक फॉर्म डी स्टूडेंट के लिए?
4: एग्जैक्टली, वो तमाम लैब्स हमने उस लेवल पर तैयार की हैं।
3: बिल्कुल सर। सर, फार्मेसी में अगर मेन डिसिप्लिन्स की बात की जाए, वो कौन कौन से हैं, या उनकी फील्ड अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए, तो वो क्या होंगी सर?
4: फार्मेसी के लिए हमारे पास आफ्टर गेटिंग अ डिग्री ऑफ फॉर्म डी, हमारे पास ढेर सारी ऑप्शंस हैं। उन तमाम ऑप्शंस को मैं वन बाय वन आपको गिनवाता हूँ। पहली चीज़ हमारे पास होती है गवर्नमेंट जॉब, जिसके अंदर हम पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास करने के बाद 17 गजटेड ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, जिसके अंदर हम एज अ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं, हम ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में जा सकते हैं, हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, या किसी और डिसिप्लिन में एज पर द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट वो हमें प्लेस कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आती है इंडस्ट्री एक बहुत वास्ट एरिया है, जिसके अंदर फार्मासिस्ट बहुत अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाता है, रादर फार्मासिस्ट है तो इंडस्ट्री है, अदरवाइज फार्मासिस्ट के बगैर इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। थर्ड हमारे पास आ जाता है सेल्स एंड मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट मैनेजर से लेकर एक ग्राउंड लेवल पर जो सेल रिप्रेजेंटेटर होता है, उस लेवल तक काम करते हैं, और उसका बेसिक मकसद ये है कि एज अ हेल्थ कस्टोडियन हम इन तमाम चीज़ों को देख सकें। देन हम एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जा सकते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि शौकत थाना आपके पास है, आगा खान हॉस्पिटल है, जिसके अंदर हमारे तमाम फार्मासिस्ट अपॉइंट होते हैं। इसी तरह से आप थोड़ा सा इसमें और आगे चलते हैं तो हम एज अ एंटरप्रेन्योरशिप अपनी फार्मेसी का सेटअप रन कर सकते हैं, हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, एंड लॉट मोर थिंग्स जो कि इस प्रोफेशन के अंदर आ जाते हैं।
3: राइट सर, जैसे कि हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तमाम उसाचा तकरीबन फील्ड से ही आए हैं, और वो फील्ड से आके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। सो सर, बिफोर दिस एजुकेशनल करियर, आपका इन तमाम फील्ड्स में से किस फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है?
4: बहुत आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने जैसे बताया कि 2011 में मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर यूसीपी में इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। इससे पहले मैंने डिफरेंट वॉक ऑफ द लाइफ में काम किया, मैंने एज अ ड्रग इंस्पेक्टर लाहौर में काम किया, मैंने एज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के तौर पर काम किया, मैंने इंडस्ट्री में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम किया, मैंने रिटेल सेटअप के अंदर एज अ ब्रांच मैनेजर काम किया. सो अ वास्ट एक ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस मेरे पास है जिसको यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज किया. और ऑफकोर्स इन तमाम चीज़ों के जरिए हम अपने बच्चों की एक बहुत अच्छे तरीके से अपब्रिंगिंग कर सकते हैं.
3: बिल्कुल, जब इतने एक्सपीरियंस होते हैं आपके पास तो आप स्टूडेंट को पॉजिटिव अच्छा मैसेज कन्वे कर सकते हैं और एक ग्राउंड रियलिटी को स्टूडेंट के सामने रख सकते हैं ताकि जब वो फील्ड में उतरे तो उसको इजी फील हो, ऐसे लगे कि मेरे असाजा ने तो मुझे ये सब कुछ पहले ही बता दिया था. सो सर, हम एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पे जाएंगे और उससे आने के बाद हम आपसे पूछेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के पास ऐसा खास क्या है और क्यों यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को ही ज्वाइन किया जाए. तो चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ. सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: Hey, this is Fakhar Abbas and you are listening to FM 92.6 UCB ki duniya. UCB ki duniya.
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCB ki duniya.
2: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
2: Listen to the exclusive song of UCP's alumni Fawad Ali.

0: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। PTA

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद, और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.
3: In sadaye Lahore, in sadaye UCP as. Lotfan goosh bedahid FM 92.6 jahane UCP.

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के ताबून से पेश किया जा रहा है।

मौसीकी के सुरोरतान सुरोरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस,

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
1: Listen to me, baby. You know I'm always thinking about you. So why don't you just forget about everything and come on to me now?

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: पहचान,
0: एक नई लगन,
1: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।

0: after a short break.
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: भूख को या तेरा चेहरा फिर अगर मैं देख लूं बस एक बार, कर शुक्र करते करते बाकी जिंदगी को 2000।
1: 200 साल गुजर गए, पंजाब सिखों के कब्जे में चला गया और बदनसीब अनारकली का मजार शहजादा खड़क सिंह की रिहाइशगाह बना दिया गया। 50 साल यूं गुजरे और फिर अंग्रेज आ पहुंचे। इबादत के लिए जगह अच्छी लगी, सो गुंबद में सलीब गाड़ी और सारी इमारत चूने से ढकती। 40 साल तक मजार हैलेलुया से गूंजता रहा, फिर सलीब तो उतर गई लेकिन मजार को दफ्तरी फाइलों से लाद दिया गया। अब तमाम दिन इसमें फोन की घंटियां गूंजती हैं और क्लर्क शोर मचाते हैं। फिर शाम होती है और सारा मजार इश्क की रोशनी में नहा जाता है, लेकिन ये मंजर तारीख दानों के लिए नहीं, सिर्फ दिल वाले ही इसे देख सकते हैं।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
0: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।